दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो बदला गाहक आयो लाद्यों का आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी क्यों पुरज पहा मोहन ठगौरी क्यों

अष्टपदी। जय मात पिता सुतु मीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माए उतारी। अनक पुने चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आकावे। जय मार्ग इहो जात अकेला, तय हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आये, नानक गुरुमुख परमगत पाईये। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही। अनक बिगन जे आए संकार, हर का नाम तत्काल उतारे। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबो न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईये साध के संग। जय मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जय पैड़े महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जय महा प्यान तपत बो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां तिरखा मन तुझे आकरख, तै नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जनकोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात। हर जन के हर नाम नितान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न पंग। हर का नाम जन की बड़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगत नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संग केते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग विड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है।

साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीत, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दीआं गल्लां करदे ते बच्चे कट्ठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दीआं गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना ता मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी एना ले भी भोजन तैयार कर लो। सो कहन तो भाव सतगुर ने केवल ए बचन आख्या नहीं, पहले बचन नू कमाया है कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नू वेखना। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहन वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार का कोई पेन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखीए,

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आए। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी, पांडे ने सवाल कीता, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी। साहिब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे। कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वह दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहिब कहिंदे ने जात ना पुछ जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान ता हो सकती है आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबा ने बाणी

सो ये बचन धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने। हुण तुसी ये देखो गुरु साहिबान ने कहा नहीं बल्कि इस नूं कर दिखाया है। हुण करके भी ऐसा दिखाया है कि मेरी निगाह अंदर केवल जोत नूं थां है, जात नूं बिल्कुल नहीं। मैं जात नूं मनदा ही नहीं, केवल जोत, क्योंकि मनुख दे अंदर जोत है ते मैं केवल जोत दी पहचान दसी है। हे गुरसिख, तू जिहदे अंदर वेखे जोत वेख, क्योंकि जे परमात्मा ने तेनू संसार विच भेजिया है ते अपनी जोत टका के, जे तेनू अखां दित्तियां ने ते केवल इसे लई कि तू परमात्मा दी जोत ही वेखे। मैं नहीं चाहना तू होर कुछ वेखे, केवल परमात्मा दी जोत ही वेखे। अज साडे अंदर फर्क क्यों पिया, असी जात वेखने आ, परमात्मा कहिंदा जोत वेखो। जात तक नहीं आ, जोत नजर नहीं आउंदी, जोत छिप जांदी है। इसलिए आपां हुण जोत दी पहचान किवें करनी है, गुरु नानक पातशाह अगे बेनती करिए, पातशाह तुसां ने जोत वेखी है, इस भी तुहाडे सिखां साडे ते भी करो कृपा, असी जोत वेख सकी। साध संगत, इको नगर दे रहण वाले धन गुरु नानक पातशाह, इत्थे ही रहने वाला ऐसा एक मनुख, एक व्यक्ति जिन्हों गुरु नानक पातशाह ज्यादा मिलते कहते पुरखा सुना की हाल है, किधर चले हैं, की काम करना है। कह लगा महाराज काम की करना है, मैं लोगों की उस्तत करना। ना की है तेरा, कह लगा जी दाना। साहब कह लगे तेनू पता है दाना किनू कहते ने, कहते नहीं महाराज, कहिंदे ने दाना कहिंदे नूं सियाणे नूं बुद्धिमान नूं, कि तू सियाणा हो के उस्तत लोकां दी करने। आ मैं तेनूं सच्चे मालक दी उस्तत करनी दसां। कहिण लगी पातशाह तुहाडा मेरा मेल नहीं हो सकना, तुसी बेदी कुलभूषण बेदी अंश विचों ते मैं एक छोटी जी जात विचों, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦਾਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਗਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇਂ

क्योंकि ए जात ता इत्थे ही रह जानी, अगे नाल नहीं जानी। बाणी अंदर ऐसा जिक्र मिलता है। धन गुरु अमरदास पातशाह

0: नीच कुला।
1: कबीर जी जात दे जुलाए सन, हजूर बाणी विच बख्शिश करदे हन के जदों नाम दी कमाई कीती तां गुणा दे खजाने बन गए।

मरे हुए टोर टोन वाला जदों नाम दी कमाई कीती, नाम दा आसरा लिया तां संसार आके चुकिया। राजे महाराजे आके चुके,

जितनी भी तारीफ जितनी भी उपमा कीती गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी अखी नजारे देखे। एक दिन दा जिक्र है हजूर दीवान दे विच सुशोभित हन हरि कीर्तन विच संगतां गड़ुच होईयां गुरु चरणां नूं जुड़ियां अमृत रस कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफल कर रही हैं। एक प्रेमी आया मत्था टेकिया चट बार चला गया। थोड़ी देर बाद फिर सतसंगत दियां दबीजां टप के अंदर आया फिर मुड़ गया। हजूर ने मेवड़े सिख नूं भेज के इस प्रेमी नूं बुलवाया। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत हजूर पुछन लगे भाई प्रेमिया तू सत संगत विच बहना चाहुंदा सैं बैठ नहीं सी रहा इसका की कारण है। ता इस प्रेमी दे नैन कटोरे भर आए हाथ जोड़ के बेनती कीती ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते जिस दरबार विच ऐसे महापुरख गुरु के सिख अजप्पा जाप करन वाले श्वास श्वास सिमरन करन वाले फिर तेरे एक इशारे ते अपना सब कुछ वार देन वाले गुर सिख जुड़े बैठे होन उत्थे मेरे वर्गे पापी नूं भी थां है। मैं तां बड़ी नीच जाति दा हां। आख्या तू किस जाति दा है गरीब निवाज सानू लोग कलाल कहिंदे हैं। हजूर ने इस प्रेमी नूं अपने गल नाल ला के आख्या कि जो गुरु नानक दे दरबार विच आ जांदा है ओ कलाल नहीं रहिंदा ओ तां गुरु का लाल बन जांदा है। उच्चारण करो श्री वाहे। जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे तां निर्मल होई। भाई साहब ए नजारा अखी देख रहे सन ते फिर आपने लिखिया कि कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। ए है हर दी वड्याई हरी दी वड्याई हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणिया।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दी सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्ना नू मिलदा है जिड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै इस नू खा आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डाक्टर कोल भी गया, डाक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं, दुख किवें दूर होवे? दवाई खाद्य बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ए ते चाहिदा है ना कि जिद कोल कुछ लैना उहदे नाल मन ते जोड़िए, उहदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचदे ने, तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक वारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे, पर गुरु साहिब जी कहिंदे ने नहीं, मिले जे तीरथ नातियां डड्डा जलवासी। जे तीरथ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा है, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीरथां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाणा किस तरह है इह भी नहीं पता। साहब जी उपदेश करते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा,
काया कहते ने शरीर नू एक अमृतसर इस धरती ते है पंजाब दे विच एक अमृतसर साडे शरीर दे अंदर है सर कहते ने सरोवर नू साहब जी कहते ने काया अंदर अमृतसर साचा मन नावे पाए सुभाई है। नाना किस तरह शरीर पानी विच नावे मन बाणी विच नावे मन नावे जे मन नहीं नाता भाव मन बाणी नाल नहीं जुड़िया ते किसे भी तीर्थ ते जाके इशनान कर लो ओदा कोई लाभ नहीं। गल ते मन दी है मन नावे पाए सुभाई है शरीर पानी विच नावे मन बाणी विच ते फिर असर होवेगा। तो सतगुरु जी उपदेश करदे ने ओदा नाम दुखां नूं दूर करन वाला है पर जिस तरह दवाई खाते बगैर आराम नहीं इसे तरह जदू तक नाम मन विच नहीं वसदा उदों तक दुखां दा नाश नहीं हुंदा ते जिहड़े नाम नाल मन जोड़ लैणगे उहनां दे दुखां दा नाश होवेगा। आओ एक बारी करो सारे रसना पवित्र।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखा नु दूर करने वाला नाम है पर किस तरह, आठ पहर आराधी अठे पैर, उदी आराधना करिए उदे नाल मन जोड़िए ते दुखा दा नाश होवेगा। डॉक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दिती है, ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड़ देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है हुण दवाई दी की लोड़। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाह। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वाल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहर दे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आ ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिथे होर संगतां आईयां एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिथे गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नु देखिया,

मत निर्भर हम मेले कबहू अपनी कृपा दा हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत न आवे तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श ले हर भावे हम अपराधी राखे गुरु संगति

वस्तु मिल जाए फिर साझा बैठ गया सब नाम को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सपला हो जाएगा। करो अरदास जिन्हें धरती में पुते है उन्हें पानी जरूर मिले, जिन्हें धरती में पुते है उन्हें पानी मिले, जिन्हें खोजिए है उन्हें मार्ग मिलता है। जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है ओदिया अरदासा मेरा धन गुरु नानक प्रजन है। पहले सेवक बोलेगा पीछे प्यार ना सारे बोलोगे।

निर्मोल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदाने के ये समूल वस्तु दे ना मूल पंज इस वस्तु का मूल पंज पर उन्हां नूं कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्हां ने कीर्तन नूं रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्हां दीआं चोरियां मालिक पर मरदानिया यह की है महाराज एक सौ रुपये दिखाए अरुण कहन लगे आपा की करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज हूं बना के मरदाने ने कहा सतगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है ते तुसी कहते हो वापस अरुण कहन लगे मरदानिया आपा इन किसे चुकी फिरांगे मरदाने ने कहा महाराज तुसी थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावांगे हम तुहानू कदे नहीं कहांगा महाराज भुख लगी अरुण कह लगे जी महाराज असी मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चू न बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बंधते जमे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे दे जाए एक सौ रुपये की शैली वापस दिखती सात राज होर प्यार आया नौकर नु बुलाया धक्का कोई रबी दूर आया है और सौ सौ के मन धरे है और सादे का थाल परोस लै मठियाई भी रख लै दुध का दरबा भी भर लै चिट्टा रुमाल पा के तू जा दे मैं दुकान बंद करके आना हाँ उस दादे के दर्शन करना अगर कब पहुंच गए सर्वा दिन के पदार्थों का थाल रखिया मत्था टेकिया हजूर ने अमीर दृष्टि न तकिया सिर को नजर करम सिरकार नानक नदरी अगर कह दिए चोरियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते हैं इधरों सारे भी आए हजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को उतारना आया दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली की है अजू कह लगे सारसराय की चाहना है साक्षा दुनियावी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होते हैं अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुद ही भाई मन नहीं हो गया मन संतुष्ट नहीं होया मन तो संतुष्टि नहीं हजूर कह लगे हां सारस राय मन का भोजन हो रहा है मन ही नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब नवाज फिर करो कृपा अरुण ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर अरुण कह लगे सारस राय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर है महाराज फिर मैं अरुण कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लैके होवे तो नहीं पर सारस राय का जरा मन रूपी चोलिया सी वह बिल्कुल सफेद अंदर श्रद्धा से प्यार सी रो पिया हरी परिवार यह तो मेरा बच्चा है पर जे तुम आखो तो मैं थोड़े कुत्तिया ने पैर से मना सकता तो दास भक्त जेदे नाल मेरे मन भी भुख दूर हो जाए अगर मैं बस पीती सारस राय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम भी मन करती मेरे हो जाए बखिश होने लगी है हजूर ने सारस राय के सिर से फिर प्रयास रखिया अमीर दिखी न तकिया देखिया सारस राय जब सतनाम कर हुक्म मस्तक हथ हरिचो मार करियां बड़ियाइया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारस राय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी हो जाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो सीवा मेरा सतगुरु तो अज सारस राय दियां झोलियां भर दित्तियां मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व माशी का दिन आखो सी भरे सारस राय दियां झोलियां भरिया गईयां तुहाडे उत्ते ही बख्शी तुहाडे उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अंधेरे को दूर कर दी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी खास आप अनुभव
सर्वत्र माई साई जो अमृत ले रही है।

0: राम भक्त बैठे घर आया, दमे कसम कदम अंत न पाया। राम भक्त बैठे घर आया, राम भक्त बैठे घर आया।
1: भजन आउंदा है एक संत वैष्णव कबीर जी दे घर आ गया। कबीर नूं चाह चढ़ गया, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां। ये पुरानी सभ्यता सी, सिख नूं सिख मिल पवे परिक्रमा करके ते मत्था टेकदा सी, मैनूं गुरु मिले पिया। नमस्कार कीती, लोई नूं आवाज मारी, लोईए आ साडे भाग जाग पै कर, संत आ गया। उड़ीकदे रहिंदे सी, आ गया प्रभु दा प्यारा। बैठ गया, इधर वेख इधर वेख, उन्हें कुछ वेख्या, ताणी वेखी, जुलाया वाला सारा समान वेख्या। ये वैष्णव सी, ये छूत छात नूं मन्नदा सी, विष्णु दा उपासक सी। ऐं वेख के ऐं वेख के कह लगा, वे तू सो जुलाहा कबीरा, तू जुलाहा। कबीर कहता, हां जी, होछी मत मेरी, मैं जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा। मत मेरी होछी है, अकल मैनू है नहीं, जात भी मेरी जुलाहा दे कर मेरा जन्म होया। पर मेरे ते गुर परमेश्वर ने कृपा की थी, मैं नाम दा लहा खटदा, सब आखो सतना। कबीर जी कहन लगे, की शकोगे? वो कहिंदा, ओ कबीरा, मैं तो तेरे घर आण के पछताउणा भी मैं आ क्यों गया। अठाठ तीर्थां दी यात्रा कीती सी, सारा भजन सारी यात्रा एवें ही गई तेरे घर आण के। तू मैनूं खाण नूं पुछदा, मैं ते पछताउणा, रात पै गई आ, जा किते सकदा नहीं, मुड़ के फिर मैनूं यात्रा करनी पऊगी। कबीर जी कहण लगे, संत जी, हुण तुसीं आत गए ही हो, पिटे ते गए ही हो, तुहाडा सारा कर्म धर्म सारा नष्ट हो ही गया, मुड़ के यात्रा कर लियो, होर टुबा ला लियो। पर जे तुसी ना कुछ खादा, तो असी भी तुहाडे सिर चढ़ के कुछ नहीं खाना, ये संताप भी तुहानू लगेगा। शास्त्र पढ़ लो, हुण जां कोई शर्त रख दियो, असी पूरी ना कर सकिए। वह कहण लगा, भी कबीरा, मैं हैगा विष्णु दा उपासक, जे तेरे घर विष्णु नूं मैं रोटी खांदियां वेख लवां ना, तो मैं भी रोटी खा लूंगा। कबीर जी कहण लगे, संत जी, इन्नी देर ला दित्ती, तुसी आउंदे ही कह दिंदे, अद्धा कम मुक्या होना सी। इन्नी देर ला दित्ती, हुण इह है नाम जपण वाला, उधर है दिखावा, सब आखो सतनाम। कबीर जी कहण लगे, लोईए खिचड़ी तैयार कर। कबीर दा जिहड़ा खाणा सी ना मन पसंद, वो खिचड़ी सी, ते गुरु अमरदास महाराज दा जिहड़ा मन पसंद खाणा सी ओगरा सी, ओगरा लूण तो बिना, मिठे तो बिना, जिवें दलिया हुंदा इस तरह। लोईए इन्हां महापुरखां दी कृपा दा सदका, अज साडे घर विष्णु भगवान आउणगे, खिचड़ी तैयार करो। खिचड़ी तैयार हो गई, इन अरदास कीती, हे निरंकार, हे परमेश्वर, हे सर्व शक्तिमान, मैं तेनू खिचड़ नहीं सी देना चाहुंदा, तू ते जर्रे जर्रे ज, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे तू नहीं, तू वसदा है, पूरी शक्ति च वसदा है। पर साथ खड़े पै गए, मैं तेनू खेचड़ नहीं सी देनी चाहुंदा, ये कहिंदा रोटी तां खानी, तू आवें ते तू कृपा कर, तू जर्रे जर्रे थे, सारे रूप तेरे ने। अज तू ये साध की खातर, संत की खातर, ये वैष्णव संत है, तू विष्णु भगवान हो के आ। अं नमस्कार की सिर चक्या तो विष्णु बैठे, ये गल गलत नहीं। बाणी का वचन है, अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, ये बाणी का वचन वो बेअंत है। अपनी भगत की रक्षा वास्ते नरसिंह बन गया, बाणी वचन है ना, भगत हेत नरसिंह भेव। अज नाम जपने वाले ने अरदास की, नाम जपने वाले ने अरदास की, हे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज मैंने तू गुरु नानक दसें, मैं जदों तेरे दर्शन करा तो मैं गुरु नानक के रूप च करा। सब आखो सतना, गुरु दूर नहीं जे, ये भावना की लोड़ है। इन्हां दी भावना जे असीं इन्हां अखां नाल वेखांगे तो पत्रे दिसणगे, स्याही दिसूगी, आ मंजी साहब दिसूगी। तो जदों अंदरले नैणा ना वेखांगे ना तो सानू शब्द दे विच गुरु नानक दिसूगा। अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, जिसनों लाए सच तिसे उधार दा, जिस दे होवे वल वो कदे ना हार दा। हुण अरदास कीती, विष्णु प्रकट हो गया, विष्णु कह लगे कबीरा आ जा बह जा इत्थे, लोइए तू ही आ जा। कबीर संत नूं कहण लगा महापुरखो तुसीं आ जाओ इत्थे बैठो हुण पंगत च। ते विष्णु भगवान कहण लगे ए इस पंगत दे विच बैठण दे लायक नहीं, ए नहीं बैठ सकदा। कमालिया तू बह जा, कमालिए तू बह जा, लोइए तू बह जा, ए संत ये इत्थे बैठण दे लायक नहीं। हैरान हो गया, मैं इहदा पुजारी, इहदा उपाशक, जुराए दे घर च आ गया, मैनू कहिंदा है इसे बैठने दे लायक नहीं। वो कबीर दे चरणा च टह पिया, कहन लगा कबीरा मैनू तो इउं जापदा जिउं तूं मोर लिया होया। सब आखो सतना, कबीर कहन लगा हां इहदा मुल है, ये सोने चांदी नाल नहीं मिलदा, खर्च कीतिया नहीं मिलदा, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, ये मन दितिया। सतगुरां दा बचन आपां हुणे पढ़े, मन भेजे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। ये मैं लिया मोल मन दे के, मन दे वटे लिया। अब मोहे राम अपना कर जाने, सहज सुभाए मेरा मन मानिया, मैनू ये मेरा मन मन गया भी राम मेरा अपना। जदों असी गुरु नू अपना जान के बेनती करांगे ना तो जरूर सुनेगा, अपना माण है ना, मेरा डैडी है, मेरी माता है, माण है ना। तो जदों असी गुरु नू अपना जाने असी गुरु दे बन जावांगे। अरदास करने वाले महाराज कहिंदे जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, कहो बेनती अपने सतगुरु पाहे, बेनती करो गुरु नू अपना जान के। जब तुसी गुरु नू अपना जानोगे ते गुरु तुहाडा अपना बन जाऊगा, तुसी गुरु दे बन जाओगे। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया, संत जी ब्रह्मे कथ कथ अंत ना पाया, ते राम भगत बैठे घर आया। आ वेखला घर च बैठा ही, जिहदा अंत ब्रह्मा नहीं पा सकिया, कथ कथ के नहीं पा सकिया, राम भगत बैठे घर आया। कहत कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत ने। सतगुरां ने आप ही बख्शिश की है, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਇਹ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਗੜੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬਲਦੀਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਉਣਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਹੁਰੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਵੀਕ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਹੁੰਬਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਦਾਂ ਵਿਆਦਾਂ ਉਪਾਦਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਲੇਸ਼ਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਰੋਗਾਂ ਸੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰ ਕੱਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਇਹ ਆਗਿਆ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਜੇ ਹਉਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰ ਕੱਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਜਿਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੋਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਆਗਿਆ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰ ਕੱਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਜਬ ਤੱਕ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਚੰਚਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਫੁਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਥੀ, 12-12 ਘੰਟੇ ਫੁਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫੁਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਫੁਰ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਪਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ।